0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Recalculating route to Sharaf DG for back-to-school shopping.
1: Parents, you heard that right. Win up to 5,000 dirhams back on laptops and tablets. Get gifts worth 500 dirhams and enjoy an extra 5% student and teacher discount. And that's not all. Save up to 200 dirhams with DIB, Al Hilal Bank, and HSBC. Power up for AI amplified learning. Shop in-store or online. TNC Supply.
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते, सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, और पहली तारीख जब होती है पेट्रोल के दाम है बताना, आज पहली तारीख है।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: ऑलराइट, आर यू रेडी फॉर दिस? पेट्रोल जस्ट गॉट नोटिसेबली मोर एक्सपेंसिव टुडे। आज सुबह से सुपर 98 3.8 दिरहम्स पर लीटर, स्पेशल 95 3.69 दिरहम्स पर लीटर, ई प्लस इज 3.61 दिरहम्स एंड डीजल इज 4.3। एक बार फिर सुपर 98 3.8 दिरहम्स पर लीटर, स्पेशल 95 इज 3.69, ई प्लस 3.61, डीजल 4.3, एंड दैट्स अ 20 फिल जंप फॉर ऑल थ्री पेट्रोल ग्रेड्स एंड 50 फिल्स। डीजल तो 50 फिल, आधा दिरहम बढ़ गया। टिपिकल फुल टैंक्स नाउ गोना कॉस्ट रफली 10 से 15 दिरहम। मेरे मैथ्स के शौकीनों मुझे बताओ, सो अराउंड 10 to 15 दिरहम्स, एम आई राइट? फुल टैंक अगर आपने कराया तो 10-15 दिरहम और की आपको थोड़ी सी हल्की सी चपत लगने वाली है। सो या दैट्स फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, या आई वुडंट कॉल इट गुड न्यूज बट इट्स इंपॉर्टेंट न्यूज टू शेयर। ये तो हमारा हर पहली तारीख का काम है, और हर रोज सुबह का क्या काम है आपका पहले घंटे का? एंड दैट इज टेल मी, व्हाट इज दैट वन सॉन्ग दैट रियली गेट्स यू अप एंड रनिंग, जैसे कि ये वाला ऊंचा लंबा कद फॉरएवर कमिंग अप फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। इन केस देयर इज अ सॉन्ग दैट यू वांट टू डेडिकेट टू दैट समवन स्पेशल, व्हाट्सएप 0543091062 पर।
1: बिग

मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हिटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यार नहीं नो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। आम हासला A1 लाइफस्टाइल A1 ऐ मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम एक ही बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल कटोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देहरादून दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर।

0: It's 7:21 on the clock on this Tuesday. Kisubha is the first day of September. And Tim Cook has said goodbye to Apple.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Bas ho gaya Tim Cook ka tenure as a CEO. Of course, he's taken over from the legendary Steve Jobs. And now, I don't think there's ever been a time इससे पहले जब जो फैंस है प्रोडक्ट के दे आर ऑल्सो लाइक हाफ ऑफ देम सेलिब्रेटिंग के अच्छा चलो यार सर एटलीस्ट इट्स गोना बी सम न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग अप इफ यू आर एन एप्पल फैन व्हाट आर योर रिएक्शंस ऑन दिस यार लेट मी नो गिव मी अ कॉल 800-1062 पर कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल द टाइटल ट्रैक फ्रॉम धुरंधर द सॉन्ग दैट गॉट इट ऑल गोइंग फॉर शाश्वत सचदेव हनुमान काइंड जैस्मिन सैंडलर्स आप बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं ऑन दिस सितंबर फर्स्ट लेट मी नो गिव मी अ व्हाट्सएप
2: 0545309-1062
1: पर
3: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना
4: टेंशन नहीं लेने का भाई अलरास है ना
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलखूज गुसेस अजमान और अलेन हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी विजिट अलरास मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
5: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
6: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
7: School's starting soon and we need a car.
8: And books, uniforms, everything.
7: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
9: And what if we need it for a short while?
7: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
10: Dubai, get ready for the Mega Zeal Ganesh Chaturthi Festive Shopping Exhibition Season 5. Presented by Mish Bros Advertising and Events. 5th September, Doubletree by Hilton, Mankhool. 10 a.m. to 10 p.m. Shop fashion, jewelry, lifestyle and festive essentials. With Dhol Tasha, Lucky Draws, Kids Activities and lots more. Zeal Season 5, where shopping meets celebration. Supported by Mukwanu, tea that connects. Shri Agrawal Sweets, premium indoor sweets. Entertainment partners, DC Productions and MRI's Teens Connect. 5th September, Doubletree by Hilton, Mankhool. See you there. Event made large by Big 106.2.
11: Dabur Pudinhara, just one tiny pearl, packed with Ayurvedic mint oils, gives your stomach instant soothing relief.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: Quite a bit more humid than the past few days. आज बहुत ही ज़्यादा chip factor है. 33 degree Celsius, humidity at 70% this morning. Winds blowing at 6 kilometers per hour. Highs of 37, lows of 33 degrees.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक गुड मॉर्निंग 9:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: It's the contest with the most dumb in town. It's called the Big Check-In.
1: Participate in the Big Check-In contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: Phone line par mere saath hai Croissant. Good morning, Croissant.
2: Good morning.
0: कितने सारे लोग अब आपको प्रशांत नहीं क्रोसांट के नाम से जानते हैं बताओ?
2: ज्यादातर लोग परसांत बोलते हैं.
0: परसांत बोलते हैं लेकिन आप ज्यादा परेशान लग रहे हैं. सेफ जोन में काम करते हैं. जब मैंने प्रशांत से पूछा भाई क्या करते हो तो कहते कंपनी में काम करता हूँ. भाई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रशांत. बट कहाँ पे काम, क्या मतलब क्या काम करते हो? व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू?
2: मैं सेल्स मैनेजर हूँ.
0: सेल्स मैनेजर है. चलो बढ़िया है यार. सो हाउ बैडली डू यू नीड अ वेकेशन, टेल मी.
2: माय सन इज स्टडी इन जर्मनी.
0: एक मिनट, ये क्या चल क्या रहा है भाई? कितने लोग यहाँ पे यूए में जिनके जिनके बच्चे जर्मनी में पढ़ते हैं?
2: मैं करीबन 5-6 आदमी लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे जर्मनी में पढ़ते हैं.
0: ये कुछ नया ट्रेंड चल रहा है? व्हाट इज दिस?
2: नया ट्रेंड नहीं. अगर जिन पेरेंट्स को नहीं मालूम उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि जर्मनी में स्टूडेंट के लिए फीस नहीं है.
0: ओके. लेकिन वहाँ आने जाने का तो रहने का तो खर्चा होना करना पड़ता होगा ना?
2: हाँ तो वो पेगासिस में जाने का 1200 दिरहम खर्चा होता है.
0: तुम्हें गुजराती जो प्रशांत भाई?
2: गुजराती परफेक्ट.
0: अरे जोरदार जय गर्मी गुजरात. मैंने खबर थी. अरे बाकी बताओ, डिग्री बिग्री गयो तेल लेवा? पहले तो खर्चो जो पड़े ना यार,
2: पैसा बचवा जो भाई.
0: तो क्रोसांत भाई तो क्या बताइए कि कितने बच्चे आपके जर्मनी में हैं और वो क्या कोर्स कर रहे हैं वहाँ पर?
2: मेरा एक ही बच्चा है, वो मैकेनिकल का कोर्स कर रहा है.
0: मैकेनिकल. एंड व्हाट अ प्लेस टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बिकॉज एक वो जर्मन इंजीनियरिंग का जो लेबल लग गया, मतलब बोलो एकदम जो कंपनी तुम्हारी लीला ले रहे है.
2: सही है ना? और वो बोल भी रहा है कि मैं उधर काम भी नहीं करूंगा, मैं वापस इधर आके ही काम करूंगा.
0: अरे तो फिर क्या फायदा हुआ इतना इतनी मेहनत करके वहाँ भेजने का?
2: तो वो भी गुजराती है ना, वो बोलता है 40% टैक्स कौन देगा?
0: आपसे कोई नहीं जीत सकता भाई. प्रशांत भाई आपसे तो बातों ना बड़ा एवा बनाओ जो कि देर इज नो विनिंग फ्रॉम प्रशांत भाई. एंड अपने जो बातों के बड़े हैं उन्होंने जो है अपने बेटे को भी ट्रांसफर कर दिए हैं. सो चलो पढ़ाई करके वापस आएंगे. लेकिन यू हैव अ चांस टू गो एंड मीट. दिस इज आई फाइंड एब्सोल्युटली इनसेन बिकॉज येस्टरडे ऑल्सो देर वॉज अ पेरेंट हुज डॉटर स्टडीज इन जर्मनी. टूडे ऑल्सो वी हैव प्रशांत हुज सन स्टडीज इन जर्मनी. सो हाँ कुछ तो चल रहा है भाई. क्या चल रहा है पता करके ही मैं रहूँगा. लेकिन बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन आपको एक गेम जीतना है टू गेट योर नेम इन टू द ड्रॉ. ऑलराइट, द गेम इज कॉल्ड फाइंड द जर्मन डिश. आर यू रेडी फॉर दिस? मैं तीन डिशेज का नाम लूंगा, राइट, और आपको बताना इसमें से कौन सी डिश इज अ जर्मन डिश. ओके?
2: ओके.
0: एंड अगर नहीं बता पाए तो भाई बहुत बेइज्जती होगी. नाउ दैट यू हैव सेट अप दैट भूमिका कि आपका योर सन स्टडीज इन जर्मनी. ऑलराइट. सो
2: बेइज्जती तो होगी भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं बहुत ज्यादा.
0: ओह थैंक यू वेरी मच फॉर बैलेंसिंग इट आउट. नाउ आप एक्सपेक्टेशन हाई करके अब लो भी कर दिया आपने अपने आप ही खुद ही. चलो तो रेडी फॉर द थ्री आइटम्स?
2: ओके.
0: द फर्स्ट आइटम इज प्रेट्ज़ल, सेकेंड आइटम इज अ बेगल, एंड थर्ड आइटम इज आप खुद यानी कि प्रशांत, बेटर नोन एज क्रोसांत. बताइए विच ऑफ दीज इज
2: नंबर क्रोसांत.
0: क्रोसांत इज अ जर्मन वन.
2: या
0: बापू सुधारो, जवाब सुधारो. एक्चुअली क्रोसांत इज अ फ्रेंच आइटम. फ्रेंच आइटम. ओके, सो नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन अ प्रेट्ज़ल एंड अ बेगल.
2: बेगल.
0: बेगल आपको लग रहा है जर्मन है?
2: मैं तो ऐसे ही तुक्का लगा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं मालूम कौन सा जर्मन है.
0: इट इज एक्चुअली अ प्रेट्ज़ल यार, मतलब. प्रशांत भाई अब आप जाओगे तो आपका बेटा तो वहाँ पे एजुकेशन ले रहा है, आपको भी थोड़ा जर्मन एजुकेशन लेकर ही वापस आना जब आप जाओगे. ठीक है?
2: ठीक है भाई.
0: डिस्पाइट रॉन्ग आंसर्स आई एम पुटिंग योर नेम इनटू द ड्रॉ. दैट्स व्हाट दिस कॉन्टेस्ट इज ऑल अबाउट. यार यू वर नॉट एबल टू फाइंड द जर्मन डिश बट यू फाइंड योर नेम इनटू द ड्रॉ. अब इतनी मेहनत करके आपने इतने सारे व्हाट्सएप किए हैं तो मैं आपको खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा. एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर आपका नाम ड्रॉ में से निकल गया यू विल बी हेडिंग आउट टू जर्मनी विद टीम बिग इन द बिग चेक इन. ऑलराइट.
2: थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू.
0: ओके टेक केयर. लीला लहर, इंजॉय योर सेल्फ मिस्टर प्रशांत उर्फ क्रोसांत. ओके, दैट इज आर ड्रॉ एंट्रेंट टुडे. अगर आप भी अपना नाम ड्रॉ में डलवाना चाहते हैं, वी डोंट केयर इफ यू गिव अस रॉन्ग आंसर्स, दैट्स जस्ट हाउ वी आर. एक मेहनत आपको जरूर करनी होगा, टाइप आउट बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम एंड व्हाट्सएप दैट टू 0543091062 जस्ट लाइक क्रोसांट डेट. सो 0543091062 पर आपको व्हाट्सएप करना है बिग चेक इन.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
3: Big 106.2.

0: Radio, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
5: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
8: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलराज, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: आई लव इट व्हेन दैट हैपेंस। प्रशांत क्रोसान का जोक ही नहीं समझा। स्पेंट लाइक 5-6 मिनट्स विद मी ऑन द फोन लाइन। बट मौसम को भी समझना थोड़ा सा मुश्किल आजकल। कभी नरम कभी गर्म, 36 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। ह्यूमिडिटी क्वाइट हाई दिस मॉर्निंग, 56% पर। हाईज ऑफ 38, लोज ऑफ 33 डिग्रीज।
8: Aras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: एनी मराठी माणूस लिसन टू मी राइट नाउ, ये क्या बोल रहे हैं, असा असा कसा बसा बसा, आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ मराठी बीइंग स्पोकन टुवर्ड्स द एंड. And talking about Marathi Manus, Rohit Sharma is going to come out with his own TV show.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: क्या है ना कि रोहित शर्मा सिर्फ ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं और हम हार्डली कोई ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं, तो यार फ्री टाइम इतना सारा उसमें क्या करें. तो रोहित शर्मा ने सोचा कि एक काम करता हूं यार, वाई डोंट आई होस्ट a family entertainment show. Yeah, so Rohit Sharma is officially becoming an entertainment show ke host. Unka program is going to be called Family Full House with Rohit Sharma. Family Full House with Rohit Sharma. It premieres on the 19th of September. Chalo saath milkar iska promo sunte hain jo kuch ghante pehle release hua.
2: Kaise kar lete hain sir aap?
3: Mehnat, discipline, hard work.
2: Bol ke bataiye na.
3: बोल कर
2: वही आपकी गार्डन वाली लाइन
4: बोल दीजिए ना एक बार.
2: वो गार्डन वाला,
3: अरे भाई तू अभी कोई गार्डन वाला मत बोलना यार,
5: वो एक बार गली क्रिकेट वाला बोल देते ना.
3: दो लाइन क्या बोल दी, इतना वायरल हो गया. जब मेरा पूरा शो आएगा तो क्या होगा.
0: I love that spirit. Yeah, जब दो लाइन थी वायरल हो सकती है तो फिर वो शो अगर पूरा का पूरा करेंगे तो क्या होगा. Yeah, so can't wait for that one. Quite interesting month of September. 19th September is when Rohit Sharma turns into an entertainment host. Oh, yeah. Rang De Lal version of OA coming up in just a while from Dhurandhar. क्या लगता है आपको रोहित शर्मा एज एंटरटेनमेंट शो के होस्ट, येस और नो, इस बात पे एक पोल तो बनता है ऑन आर इंस्टा पेज 106.2 बिग एफएम. दैट्स आवर इंस्टा हैंडल. दिस इज बिग 106.2 एंड वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड.
6: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था और शराफत से अपनी कभी नहीं बना. जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया.
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ दो घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
7: Schools starting soon and we need a car.
8: And books, uniforms, everything.
7: Don't worry, I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
9: And what if we need it for a short while?
7: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
10: Dubai, get ready for the mega Zeal Ganesh Chaturthi Festive Shopping Exhibition Season 5. Presented by Mish Bros Advertising and Events. 5th September, Doubletree by Hilton, Mankhool. 10 a.m. to 10 p.m. Shop fashion, jewelry, lifestyle and festive essentials with Dhol Tasha, lucky draws, kids activities and lots more. Zeal Season 5, where shopping meets celebration. Supported by Mukwanu, tea that connects. Shri Agrawal Sweets, premium indoor sweets. Entertainment partners, DC Productions and MRI's Teens Connect. 5th September, Doubletree by Hilton, Mankhool. See you there. Event made large by Big 106.2.
11: UAE, the biggest laptop buyback is back at Sharif DG. This school season, get up to 500 dirhams off on your working or non-working laptop. Ready to supercharge your study sessions? Visit Sharif DG today and elevate your PC experience. T's and C's apply.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
0: It is 9:47 on the clock. Let's start with the capital, Abu Dhabi. Aapko halka bulka traffic milne wala hai Musaffa Industrial par. Then there's a bit of congestion E22 par heading towards the Sheikh Zayed Grand Mosque. And traffic has started E11 पर बनियास की तरफ जाता हुआ नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक मफरक इंडस्ट्रियल एरिया पे E11 की मैं बात कर रहा हूँ. चलते हैं दुबई शारजा हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड दुबई फ्रॉम शारजा. बोथ द आर्टरीज ऑफ 311 एंड E11 यू विल फाइंड एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 मिनट्स का डिले. 8 to 10 मिनट्स का ट्रैफिक आपको मिलेगा एट ट्रेड सेंटर अराउंड अबाउट 9 मिनट्स इनफैक्ट एंड दिस इज हेडिंग नॉर्थ गोइंग टूवर्ड्स ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट एंड दिस इज ऑन E11 शेख जायद रोड. देयर इज D71 व्हिच इज कंजेस्टेड एज एवर. दुबई मॉल की तरफ जाता हुआ ये रास्ता बिजनेस बे मेट्रो स्टेशन के आसपास की सड़कें आपको काफी कंजेस्टेड मिलेंगी एंड गोइंग टूवर्ड्स अल जदाफ हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ E11 ऑन 66 यू विल फाइंड 6 से 8 मिनट की देर.
4: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 10:08।
1: Bollywood.

0: एंड जेन जी भी हमको बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तो फिर आओ, हम आपको बताते हैं कि आप हमारे हिसाब से बूढ़े हैं कि नहीं है।
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating, built in the UAE, trusted across the UAE, insurancemarket.ae.
2: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: This is quite crazy, but it's very logical as well. So Gen Z ने एक नया तरीका ढूंढा है to guess a co-worker's age. पता लगा सकते हैं कि आपकी ईमेल आईडी से, आपकी ईमेल आईडी से पता लगा लेंगे कि आप बूढ़े हैं कि नहीं है. और क्या है, क्या है ये लॉजिक, इट्स गॉन टोटली वायरल दिस पर्टिकुलर थिंग दैट अगर आपका जीमेल एड्रेस, इफ योर जीमेल एड्रेस इज योर नेम राइट विद नो एक्स्ट्रा नंबर्स और लेटर्स, आपका जीमेल आईडी, क्या आपके जीमेल आईडी में आपका पूरा नाम है विदाउट एनी एक्स्ट्रा लेटर्स सिंबल्स और एनीथिंग लाइक दैट नंबर्स एटसेट्रा, इसका मतलब आप बूढ़े हैं अकॉर्डिंग टू जेन ज़ी. अब आप पूछेंगे क्यों भाई, इसमें क्या क्या लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, अगर आपके जीमेल एड्रेस में आपका पूरा का पूरा नाम आता है, विच मीन्स दैट यू क्लेम्ड इट वेरी अर्ली बैक वेन, उस जमाने में जब जीमेल वॉज इन्वाइट ओनली, मेकिंग यू ओल्ड बाय जेन ज़ी स्टैंडर्ड्स. बताओ भाई, लॉजिक तो है, कुछ भी बोलो, कभी कभी ही सही, लेकिन जेन ज़ी पते की बात तो करता है, लॉजिकल बात तो करता है. आई कंप्लीटली अग्री विद जेन ज़ी के हाँ, अगर आपके जीमेल आईडी में आपका पूरा नाम है तो भाई यू आर काइंड ऑफ थिंक ऑफ चेंजिंग योर एड्रेस. चलो जेन ज़ी से चलते हैं जेन अल्फा की तरफ, जो अभी इस वक्त स्कूल में होंगे. एंड फोर्ड बैक टू स्कूल 2026 कैंपेन बाय अल्टायर मोटर्स कैंपेन रन टिल द 27th ऑफ सितंबर. बाय नाउ पे इन 2027, अगले साल डाउन पेमेंट ऑन अल्टायर मोटर्स, वन ईयर फ्री इंश्योरेंस, 5 साल या फिर 100,000 किलोमीटर्स की सर्विस एंड वारंटी. ऑफर्स अवेलेबल ऑन सिलेक्ट Ford models, a great opportunity for all families to get ready for the new school year with attractive Ford offers.

0: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से।
1: द बैटल फॉर द थ्रोन ऑफ मिर्जापुर इज फार फ्रॉम ओवर। द सागा मूव्स टू द बिग स्क्रीन। एक्सेल एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स यू द मोस्ट एक्सप्लोसिव अनसीन चैप्टर ऑफ द मिर्जापुर यूनिवर्स एट अ थिएटर नियर यू। Releasing on the 4th of September. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win free invites, keep listening to Big 106.2.
2: Digestion Cool Tips with Dabur Pudin Hara.
3: AC से रूम कूल होता है, डाबर पुदीन हरा से टमी फील्स कूल। वन टाइनी पर्ल विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स हेल्प सूथ इनडाइजेशन डिस्कम्फर्ट नेचुरली।
2: Dabur Pudin Hara, stay indigestion free the natural way. Available on Noon Minutes. Consult your doctor or pharmacist before consumption.
4: Listen to her every day.
5: Mugambo, खुश हुआ।
6: निखिल को जिन्होंने जब फोन उठाया तो पीछे से आवाजें आ रही थी, मैंने बोला निखिल मम्मी डांट रही है क्या, तो निखिल ने कहा नहीं बीवी है। है ना निखिल? तो बीवी क्यों डांट रही है?
7: अरे नहीं।
6: अच्छा नहीं डांट रही है,
7: लेट आया तो ऑफिस से।
6: अच्छा इसलिए डांट रही थी,
7: कोशिश कर रहा था इतने में आपको कॉल आ गया।
6: बहुत बहुत सॉलिड डांट पड़ रही थी बाय द वे निखिल को जब मैंने कॉल किया है। चलो निखिल मैं थोड़ा सा आपको मौका देती हूँ कि चार पांच दिन बीवी से दूर रहो। निखिल जर्मनी गए हो आप पहले?
7: नहीं।
6: निखिल आपको हम दे रहे हैं मौका शॉर्टलिस्ट होने का फॉर दिस अमेजिंग ट्रिप टू जर्मनी। वेरी वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिचुएशन एंड देन प्ले अ डायलॉग। आपने बस गेस करना है कि वो डायलॉग किस मूवी से था, ठीक है?
7: ओके।
8: मोहब्बत क्या होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जारा के लिए दिल से एक दुआ जरूर निकलती है। किसकी आंखों में कभी आंसू ना आए।
6: बिल्कुल सही जवाब। बट निखिल मुझे एक बात तो बताना कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या होगा?
7: आप तो सीधा ही मेरी जर्मनी में वहीं पे पिटाई चालू हो गई।
9: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: It is 10:25 and the second day of back to school and back to traffic. Lekin things ease out after 10 o'clock. Aaj E11 par kaafi zyada traffic hai. Heading right at Trade Center roundabout going south, you'll find around 6 to 7 minutes ka delay out there. D75 par heading towards Dubai frame, you'll find a bit of congestion. Sheikh Rashid street ki main baat kar raha hun. Then there is 71 as always heading towards Dubai mall, you'll find congestion. DIFC pe bhi aapko traffic milega 5 se 6 minute ka. 66 is unusually busy. Aaj Jaddaf se nikal ke aap E11 Sheikh Zayed road ki taraf jayenge to aapko traffic milega. E44 as usual going towards business way from D3, expect a 5 to 6 minute delay. And there's a bit of congestion aaj Nadal Hammar pe in both directions going towards the festival city wala area. In case you spot something, give me a call. 800-1062.
9: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पर उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे हैं सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दिल को धड़क धड़का, धड़फड़ाहट, थरथराहट, टपक पहाड़ धड़फड़ाहट, थरथराहट, टपक पहाड़ धड़फड़ाहट, झटपटाहट, धड़फड़ाहट, झुबुगाहट, झुबुलाहट, झुबुदाई, झुबिलाई, झुबुगाहट।

0: दैट इज राणा जी 2.0 और कमी ऐसा होता है कि ओरिजिनल वाला 1.0 वाली जो स्टारकास्ट है वो 2.0 की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ ममता कुलकर्णी ने जम के 2.0 की तारीफ की है।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: Alright, so we need to sign off from the Big Breakfast. लेकिन आपको जाते जाते याद दिला दूं कि हमारे शो के कर्ता धर्ता कौन है। You can drive home your dream SUV this summer with Jetour's unbeatable offers. The Big Breakfast brought to you by Jetour. VAT on us or 0% interest. Free service package included. 1 million kilometers की warranty. EMI starting from guess what? Just 966 dirhams per month. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply. On that note, I'm going to be zooming out of the studios. Join you tomorrow morning sharp at 7 on a weekday from 7 to 11. This is the perfect way to start your day. It's called The Big Breakfast with me, Sid. Main chalta hun. You can follow us on socials via 106.2 Big FM. 106.2 Big FM. I'm Sid Sid, S-I-D-S-E-T-H. Till tomorrow, enjoy the rest of your Tuesday. Bye-bye.
2: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: दिस समर दिस बिग कैश विन्स विद बिग टिकट,
3: अ गारंटीड 15 मिलियन दिरहम ग्रैंड प्राइज अवे,
2: प्लस विद बिग स्पिन द चांस टू विन अप टू 1 मिलियन दिरहम्स
3: एंड 5 कंसोलेशन प्राइजेस ऑफ 100,000 दिरहम ईच।
2: डोंट फॉरगेट द 4 weekly cash prizes of 25,000 dirhams.
3: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18+ game. Play responsibly. TNCs apply.
5: 2 splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurancemarket.ae.
1: Big 106.2. That's my song.

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जादेरा रसल खोर अलकूस गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लड़ेगा?
3: यूं ही यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपने कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
1: Kar hi nahi sakte. Chaho bhi to nahi kar sakte.
2: It's going to be a rapid fire. Okay, burger khaya aapne to burger ya pizza?
3: Burger.
2: Okay, burger ya pasta?
3: Pasta.
2: Okay, pasta या फिर हैक नूडल्स?
3: हैक नूडल्स.
2: Okay, हैक नूडल्स या मंचूरियन?
3: हैक नूडल्स.
2: Okay, हैक नूडल्स या पाव भाजी?
3: पाव भाजी.
2: पाव भाजी या वड़ा पाव?
3: पाव भाजी.
2: पाव भाजी या आलू का पराठा?
3: आलू का पराठा.
2: आलू का पराठा या फिर गोभी का पराठा?
3: आलू का पराठा.
2: आलू का पराठा या पनीर पराठा?
3: आलू पराठा.
2: आलू पराठा या राजमा चावल?
3: आलू पराठा.
2: देख लो.
3: This is so good. और घर का बना हो तो इवन बेटर.
2: देख लो, आपके बर्गर बर्गर को हरा दिया आलू पराठा ने. अच्छा, आलू पराठा से ऊपर कुछ है?
3: अचार, आम का अचार.
2: आलू पराठा को कोई बीट करने के लिए डिश है? ओके ओके ओके. इफ यू रियली थिंक कि आलू पराठा के ऊपर कोई और डिश जाती है, ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल करो मुझे 800-1062 पर. तब तक मैं और डिंपल जरा डिस्कस करते हैं कि आलू पराठा सबसे बेस्ट.
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM. द बिग मिक्स विद अवनी. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:09
1: Bollywood.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
4: बर्फ तो नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि यार बाहर जाते ही ना इसे पानी पड़ रहा है. बारिश नहीं, लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी है कि जेन्युइनली लगता है कि भाई पानी में खड़े हो गए. ह्यूमिडिटी लेवल्स आर 54%, 37 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। एंड हर महीने की स्टार्टिंग में मैं भी सोचती हूँ आपकी तरह कि यार इस मंथ ना मैं पक्का सेविंग करूंगी, पक्का इस बार तो मैं पक्का कुछ ना कुछ तो सेव करके रखूंगी ही। बट सितंबर 1 इट इज फ्यूल प्राइसेस जो हैं फिर से इंक्रीज हो चुके हैं इन यूएई विद सुपर 98 नाउ 3.80 dirhams a liter, while diesel has jumped to 4.30 dirhams. So basically, filling up your car will cost you a little more this month. अगर मैं आपको configuration बता दूं तो special 95 जो है अब 3.69 dirhams per liter हो चुका है, E plus 91 3.61 dirhams per liter हो चुका है. So basically, a full tank will roughly cost you 10 to 15 dirhams more, depending upon the vehicle and of course the fuel grade. क्या लगता है? क्या लगता है फिर भी आप क्या कुछ सेव कर पाओगे?
3: वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार,
2: बिल्कुल सॉफ्टीज हो गए। My favorite song of Karan Aujla, by the way. Song का नाम softly है, लेकिन मुझे एक सवाल है कि जो इसमें बोलता है चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, what is ललारिया? क्या आपको पता है ललारिया का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है, do give me a call on the toll free number 800-1062. अब यार पंजाबी आई तो कुछ कुछ words सिखा के जाएगी। What is the meaning of ललारिया? What do you think in this song? Word ललारिया means softly by Karan Aujla coming your way after this track.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज, अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
2: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से।
3: द बैटल फॉर द थ्रोन ऑफ मिर्जापुर इज फार फ्रॉम ओवर। द सागा मूव्स टू द बिग स्क्रीन। एक्सेल एंटरटेनमेंट ब्रिंग्स यू द मोस्ट एक्सप्लोसिव अनसीन चैप्टर ऑफ द मिर्जापुर यूनिवर्स एट अ थिएटर नियर यू। Releasing on the 4th of September. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win free invites, keep listening to Big 106.2.
4: Listen to her every day.
5: Mugambo! Khush hua!
6: Quickly name three things jinka naam shuru hota hai with the letter Z.
7: Zip, xylophone.
6: Xylophone.
7: Zebra. Oh, xylophones with an X.
6: हो गया, टाइम खत्म। मिस चांदनी, टाइम इज ओवर। तीन वैरायटी ऑफ मैंगोज।
7: चौसा।
6: हाँ, इसी को दिया
7: तुमने। सिंदरी एंड अनवर टोल।
6: क्या?
7: चौसा, अनवर टोल एंड सिंदरी।
6: व्हाट इज अनवर टोल?
7: इट्स अ टाइप ऑफ मैंगो इन पाकिस्तान।
6: रियली? अच्छा, आई डिडंट नो दैट। चलो, गुड इन्फॉर्मेशन फॉर मी। क्विकली, तीन शाहरुख खान की फिल्मों के नाम।
7: मैं हूं ना, कुछ कुछ होता है, खुशी कभी गम।
6: वेरी नाइस, शाहरुख खान फैन मिस चांदनी। तीन ऐसे झूठ जो आप अपने बॉस को बोलते हो।
7: कि आज गाड़ी का टायर फट गया, कि मैं उठी नहीं और रोड पे एक्सीडेंट था।
6: हाँ। इनमें से मानते कौन से?
7: सारे मान जाते हैं, बहुत ही अच्छे।
6: सिंगल है क्या वो भी?
7: तकरीबन।
8: Your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: With schools back in session, traffic build ho raha hai. Of course, around Dubai Sharjah routes, especially E311 around Al Ghazal, Al Nahda. एंड अल इत्तेहाद रोड पर भी आपको स्लो मूवमेंट मिलेगी। बट हैविंग सेड दैट, दुबई साइड पर ट्रैफिक मिलेगा आपको दुबई एयरपोर्ट, अल गरूद एंड मिर्दिव से। बट कंपैरेटिवली इट हैज अ लाइटर ट्रैफिक। अगर कहीं और फंसे हो, डू लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर।
8: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
10: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
8: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. And you tell me, यार, what is messier, this general Tuesday या फिर मेसी की news? बस यार, मेरे इंस्टा पे तो ऐसी मीम्स आ रही है, मैं क्या कर सकती हूँ. रिसेंटली मेसी ने जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है अपनी फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल. एंड रिसेंटली फीफा भी हुआ था, अ लॉट हैज बीन मेड, बहुत कुछ हुआ इस सीजन में भी, लेकिन फाइनली रिटायरमेंट तो हो चुकी है. ही हैज़ मेड हिज मार्क. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ मेसी फैंस, यू टेल मी इफ यू हैव बीन वन. लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी है, आई जस्ट कांट गेट ओवर दिस, कि मेसी ने भी ना अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ में. आपको क्या लगता है कि वो और हम ऐसे सिमिलर सेम जैसे हैं क्या?
2: क्या बात है?
1: फील होता है इज वन ऑफ आवर ओन. वेल, व्हाट्स बीन योर थॉट्स ऑन मेसीज रिटायरमेंट? डू लेट मी नो. कॉल करके 800-106-24. एंटिल देन, कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: एंड दैट वाज जुगनी ट्रैक फ्रॉम द फिल्म क्वीन, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स. लेकिन अगर आपके बच्चे को भी इसे क्वीन प्रिंसेस बिहेवियर चाहिए.
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 में अवनी आपके साथ एंड मैं बात कर रही हूँ सेल्फ ड्राइव के बारे में. दिस इज To be get school ready and self drive के साथ आप ये कर सकते हो. Get ready with me की reels बहुत देख ली, लेकिन it's time to get school ready with self drive. Now you can rent a car starting from 1099 dirhams per month, flat rate for the year, zero penalty on early returns. So basically full princess behavior with self drive. Keep it locked to big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:08
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड कहा था ना कि इस आवर हम आपको लेके जाने वाले हैं जर्मनी विद द बिग चेक इन. पर मैं आपको उससे पहले बता दूं, जर्मनी का अभी का टेम्परेचर जो है ना, इट्स रेंजिंग फ्रॉम अ हाई ऑफ 21 डिग्रीज टू अ लो ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस. क्लाउडी स्काइज है एंड हल्की हल्की बारिश भी हो चुकी है. अब आज की जितना ह्यूमिड वेदर है बाहर, इट्स 70% ह्यूमिडिटी अभी इस वक्त. अब इमेजिन करो जर्मनी का ये वेदर. और अगर आपको चलना है हमारे साथ, ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू दिस नंबर. दिस व्हाट्सएप नंबर ध्यान से सुनना, 0543091062. एंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हमने कॉल किया है आज सागर को. हाय सागर.
3: हाय अवनी, थैंक्स फॉर कॉलिंग. इट वाज अ प्लेजर रिसीविंग योर कॉल. यस,
2: ओके ओके. काफी एक्साइटेड लग रहे हो. क्या क्या तैयारी yeah. करी है जर्मनी के लिए?
3: पूरा एनसाइक्लोपीडिया मैंने छाप दिया पिछले कुछ दिनों से जर्मनी को लेकर. लेट्स ट्राई.
2: लेट्स ट्राई कि इतना एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने के बाद आप ये आंसर कर सकते हो कि नहीं. आई एम गोना गिव यू 3 फूड डिशेस. आपको मुझे okay. बताना है कि कौन सी जर्मनी की है.
3: ओके,
2: यू रेडी?
3: यस यस प्लीज.
2: ओके, एप्पल स्ट्रूडल.
3: ओके,
2: वर्सेस चूरोस वर्सेस डोनट.
3: ओके, आई थिंक डेफिनेटली डोनट्स इज नॉट.
2: ओके,
3: एंड churros should also not be, as per the terminology, I think it should be apple strudels.
2: Apple strudel.
3: Yes.
2: It's correct. Confirmed?
3: Yes, yes.
2: Lock kar diya jaye?
3: Yes, please.
2: It is the right answer.
3: Yes.
2: देखो यार, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने तुक्का अच्छा मार दिया यार.
3: नहीं नहीं नहीं, I was joking, but yeah, just apply the common sense as per the terminologies or the terms.
2: Perfect. तो ये खाओगे वहाँ जाके? आपको पता है ये क्या होता है, कैसे बनता है?
3: नहीं, ये तो नहीं पता, but being a vegetarian, I think I would be having limited options, so definitely I would have to go for it.
2: Well, let's search कि apple strudel जो है is a veg dish or a non-veg dish. ये हम अभी इसके बाद सर्च करते हैं, आप और मैं दोनों, because मैं भी वेजिटेरियन हूँ.
3: Okay, that's cool.
2: Thank you so much, Sagar. आपका नाम shortlist होता है आज के contest में. इसके बाद का process क्या रहता है वो बाद में बताएंगे. Well, if you wanna participate, register करना है अपना नाम. All you gotta do is type big check-in, space your name and send it to 0543091062.
0: Participate in the big check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Travel partner AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: that was tabahi track from the film Toxic. Tabahi track jo hai tabahi macha raha hai in box office. Bahut badhiya chal raha hai gana. Lekin ek aisi film jo aapne abhi tak nahi dekhi hai, I'm telling you, you are going to miss on it.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 mein hum Avni aapke saath. In ek aisi film release hui thi yaar 2024 mein jiska naam hai Madgaon Express. थिएट्रिकल रिलीज थी, ऑफकोर्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना नहीं कर पाई, लेकिन जब वो OTT पर रिलीज हुई, Amazon Prime Video पर रिलीज हुई, बहुत लोगों ने देखी, पीपल एब्सोल्युटली लव्ड इट. एंड आई एम ऑल्सो गिल्टी यार, मैंने भी सिनेमा हॉल में नहीं देखी थी, लेकिन मैंने OTT पर जब देखी, आई वॉज लाइक हाउ डिड आई मिस दैट फिल्म. स्टारिंग प्रतीक गांधी, अविनाश तिवारी एंड अनौरा फतेही एंड दिव्येंदु, ये जो तीन टॉप नॉच कास्ट के लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया है फिल्म. इट्स सच अ फनी फिल्म, यू विल लव इट. अगर अभी तक नहीं देखी है, Amazon Prime Video पर अभी भी मिल जाएगी. हैविंग सेड दैट, उसका पार्ट टू जो है, क्योंकि वो इतनी चल गई, उसका इतना नाम हो गया, इतने लोगों ने देख ली, तारीफ कर ली, वर्ड ऑफ माउथ से बाहर चली गई, पार्ट टू सीक्वल बनने जा रहा है. अब सीक्वल बनेगा तो पार्ट वन की कहानी तो पता होनी चाहिए ना. बट हैविंग सेड दैट, एक अगर मुझे यू नो एक स्टेटमेंट देनी है अबाउट दिस फिल्म, आई विल गिव इट. Laughter vibes in this movie. Watch it. Agar abhi tak nahi dekhi hai, you will thank me later. Till then, keep it locked to Big 106.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:09। Bollywood.

0: रूठे चाहे ना रूठे, पर मेरा खाना वो कभी नहीं रूठना चाहिए यार।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। एंड कई बार ऐसा होता है यार कि मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छी हेल्दी डाइट पर चली जाऊँ, टेस्टी टेस्टी ये जो जंक फूड होता है ना मैं ना खाऊँ, लेकिन जब भी मैं हेल्दी फूड भी बनाती हूँ मैं पूरा का पूरा चट साफ कर जाती हूँ यार।
2: फिर मैं तो देख देख शीशा शर्मूंगी, फिर मैं तो देख देख
0: झूठ नहीं बोलूंगी यार, ऑफकोर्स वेट गेन देख के मुझे थोड़ी सी शर्म तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद आप मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं तब भी खाना छोड़ दूँ, कम खा लूँ। ओहो हो हो, that's a lot to ask honestly, lekin if you think you are a bigger or a better foodie than me, all you gotta do is call karo mujhe 800-1062 par, because it's time we play is the number, toll free है, call करो मुझे, हम खेलेंगे खाओ पियो ऐश करो गेम। अगर अभी तक लंच नहीं किया है तो हिम्मत है कि कॉल करके मेरे साथ फूड वाली गेम खेल लो, या फिर अभी तक खाना नहीं खाया है, हैंग्री हो, उसके बाद हिम्मत है कि आप मुझसे खाने वाली गेम खेल लो। 800-1062 it is, till then keep it locked to big 106.2।

0: बॉलीवुड।
1: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से।
2: द बैटल फॉर द थ्रोन ऑफ मिर्जापुर इज फार फ्रॉम ओवर। The saga moves to the big screen. XL Entertainment brings you the most explosive, unseen chapter of the Mirzapur universe at a theatre near you. Releasing on the 4th of September. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win free invites, keep listening to Big 106.2.
3: Listen to her every day.
4: Mugembo! Khush hua!
5: Quickly name three things jinka naam shuru hota hai with the letter Z.
6: Zip, xylophone, zebra.
5: Ho gaya time khatam, Miss Chandni, time is over. Teen variety of mangoes.
6: Chausa.
5: Haan. Isi ko diya
6: sir. Sindri and Anvaratol.
5: Kya?
6: Chausa, Anvaratol and Sindri.
5: What is Anvaratol?
6: It's a type of mango in Pakistan.
5: Really? Achha, I didn't know that. Chalo, good information for me. Quickly, teen Shah Rukh Khan ki filmo ke naam.
6: Main hu na, kuch kuch hota hai,
5: yes.
6: Khushi kabhi gham.
5: Very nice, Shah Rukh Khan fan, Miss Chandni. Teen aise jhoot, jo aap apne boss ko bolte ho.
6: Ke aaj gaari ka tire phat gaya, ke main uthi nahi aur road pe accident tha.
5: Haan. Inme se maante kaun se?
6: Sare maan jate hain, bahut hi achhe.
5: Single hai kya wo bhi?
6: Takriban.
0: Your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
7: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है.
8: मुझे खुद का पता था यार. अगर हूँ तो हूँ.
0: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
11: भाई वक्त बदल रहा है, लेकिन ये आज के वेदर की ह्यूमिडिटी क्यों नहीं बदल रही है यार. 67% राइट नाउ विद 37 डिग्री टेम्परेचर.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हम खेलने वाले थे खाओ पियो ऐश करो। Let's see, आज किसकी जाने है? हेलो
2: हेलो, आई एम दीक्षा।
1: दीक्षा, आपने खाना खा लिया? लंच कर लिया?
2: जी कर लिया।
1: क्या खाया लंच में आज?
2: बिरयानी।
1: बिरयानी, अरे वाह, ट्यूसडे को आपने स्पेशल बनाते हुए बिरयानी खाई है। ओके, सो आई एम गोना गिव यू टू ऑप्शन, टू फूड डिशेस, आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करनी है। ऑलराइट
2: ऑलराइट,
1: ओके। बिरयानी या पाव भाजी?
2: बिरयानी।
1: बिरयानी या आलू का पराठा?
2: आलू का पराठा।
1: आलू का पराठा या गोभी का पराठा?
2: आलू का पराठा।
1: आलू का पराठा या बटर चिकन?
2: बटर चिकन।
1: बटर चिकन या व्हाइट सॉस क्रीमी चीजी पास्ता?
2: बटर चिकन।
1: ओके, बटर चिकन या फिर पिज्जा?
2: बटर चिकन।
1: ओके, बटर चिकन या बिरयानी?
2: टफ क्वेश्चन, बटर चिकन।
1: मुझे लगा वो लोग यार बड़ा चिकन वाली बिरयानी, बट हैविंग सेड दैट, बड़ा चिकन फॉर द विन। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो बड़ा चिकन को हरा सकती है?
2: मम्मी के हाथ का चिकन।
1: थैंक यू सो मच दीक्षा। अब ये खेलने के बाद आपको थोड़ी सी और भूख लगने लगी है?
2: बिल्कुल, आई थिंक मेरा डिनर बटर चिकन ही होने वाला है।
1: तो लगा ही था, लंच में बिरयानी, डिनर में बटर चिकन, व्हाट अ लाइफ ट्यूसडे इट इज। थैंक यू सो मच। वेल, इफ यू वांट टू प्ले दिस गेम विद मी, ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल करो मुझे टोल फ्री नंबर पर 800-1062। एंटिल देन, कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: एंड दैट वाज उफ बाय हर्षदीप कौर, लेकिन आपके मुंह से भी ना उफ निकल ही जाएगा ये फेस्टिव शॉपिंग एग्जीबिशन देखने के बाद।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज मेगा जील गणेश चतुर्थी फेस्टिव शॉपिंग एग्जीबिशन सीजन 5 प्रेजेंटेड बाय मिश ब्रोस एडवर्टाइजिंग एंड इवेंट्स। 5 सितंबर को होने जा रहा है 10 AM टू 10 PM डबल ट्री बाय हिल्टन मनखूल दुबई में। क्या क्या शॉप कर सकते हो? फैशन, ज्वेलरी, लाइफ स्टाइल, फेस्टिव एसेंशियल्स, बेसिकली सारी लड़कियां वहां जाके।
2: What, झुमका?
0: What, नहीं, कौन कौन से झुमके ये करने वाली हो? And just not that, entertainment activities भी होंगी, ढोल ताशा, lucky draws, kids activities and a lot more, supported by Mukwano Tea that connects, Shri Agrawal Sweets, Premium Indoor Sweets, entertainment partners, DC Productions, MRI's Teens Connect, Zeal Ganesh Chaturthi Exhibition Season 5, where shopping meets celebration. 5th September, mark your date, Double Tree by Hilton, Mankhool. See you all there. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: What, Chumka?
1: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001 हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:09 फिलहाल मेरे कॉफी का टाइम।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: कभी कभी गाड़ी में बैठे मन करता है यार कि शीशा नीचे करके देखे जरा यार, बाहर की हवा लेते हैं। हवा बहुत कम है, ह्यूमिडिटी लेवल्स जो है 70% पे जा चुके हैं विद 36 डिग्री टेम्परेचर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 बिग।
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
5: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड सितंबर 11 को एक नई फिल्म रिलीज होने वाली है हैवान. लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, करते हो, पसंद है, देयर इज दिस वन सॉन्ग जो आपको अपनी ट्रैवल प्लेलिस्ट में ऐड कर देना चाहिए.

I absolutely love this track. Recently ही आया है हैवान का पहला song. The film is directed by Priya Darshan. Cast में अक्षय कुमार है, सैफ अली खान है, बोमन ईरानी. And the best part is, it's an official Hindi remake. 2016 की मलयालम फिल्म ओपम का ये हिंदी रीमेक है, जो कि वैसे ही इतना सक्सेसफुल फिल्म थी. And this one is a crime thriller. And the best part is, इसमें सैफ अली खान है. I love him, absolutely love him. And उनकी recently फिल्म आई थी Netflix पर कर्तव्य. And that is his best film. You know why? Okay, why? Because उस फिल्म में मैं हूँ. अगर आपने मुझे स्पॉट किया है कभी, कॉल करो मुझे 800-1062 पर. नहीं देखी है फिल्म तो वो भी देख लेना. By the way, September 11th is the date. I have marked my calendars for Hewan. One more travel song coming your way only on Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: This summer, there's big cash wins with Big Ticket.
5: A guaranteed 15 million dirham grand prize away.
4: Plus, with Big Spin, the chance to win up to 1 million dirhams.
5: And 5 consolation prizes of 100,000 dirham each.
4: Don't forget the 4 weekly cash prizes of 25,000 dirhams.
5: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18+ game. Play responsibly. TNCs apply.
7: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
8: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड सितंबर शुरू हो चुका है, लेकिन एंड ऑफ सितंबर तक ये भी शुरू हो जाएगा. मैं बात कर रही हूँ इतिहाद रेल पैसेंजर नेटवर्क, जो कि ऑफिशियली दुबई आ जाएगी सितंबर 30 से. वेरी वेरी वेरी एक्साइटिंग न्यूज फॉर कम्यूटर्स लाइक मी यार. द न्यू दुबई अल याला स्टेशन नियर जुमेरा गोल्फ एस्टेट अलॉन्ग शेख मोहम्मद बिन जायद रोड इज शेड्यूल्ड टू ओपन ऑन सितंबर 30. द बिग हेडलाइन इज के दुबई और आबू धाबी की जो एक्सपेक्टेड जर्नी है वो अब 57 मिनट्स में पूरी हो जाएगी. And the station will also be connected to Jumeirah Golf Estates metro station on the red line via a dedicated pedestrian bridge. So basically, Etihad Rail or Dubai Metro का जो स्विच है वो भी इजी हो जाएगा. द गुड पार्ट, द बेस्ट पार्ट इज अगर आप रहते हैं नियर अल्फरजान, डीआईपी, ग्रीन कम्युनिटी, दुबई साउथ या फिर एक्सपो सिटी, दिस इज अ वेरी वेरी वेरी यूजफुल न्यू वे टू ट्रैवल. बेसिकली रोड जर्नी को अब आप पीछे छोड़ दोगे, अब ट्रेन जर्नीज पर आ गए भैया. एंड आई लव ट्रेन जर्नीज. लेट मी नो इफ यू आर एक्साइटेड टू ट्राई and travel in this new Etihad Rail. September 30 se shuru hoga Dubai and Abu Dhabi. Till then, keep it locked to Big 106.2. Achha.

0: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2

0: ड्रॉ
1: एंड बस कुछ दिन और आपको अपने फिंगर्स क्रॉस रखने हैं. आस्क योर डॉटर टू ऑल्सो कीप अ फिंगर्स क्रॉस्ड इन बर्लिन. दैट अगर आपका नाम ड्रॉ में से निकल गया, यू विल बी हेडिंग आउट टू बर्लिन विद टीम बिग. हाउ डज इट फील राइट नाउ? डिस्क्राइब योर फीलिंग्स.
2: इट रियली फील्स नाइस. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बेसिकली पार्टिसिपेटिंग इन सच काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन.
1: सो आर यू गोना टेल योर डॉटर और इज गोना बी अ सरप्राइज और व्हाट?
3: Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: ट्रैफिक ऑब्वियसली दुबई शारजा कॉरिडोर पर काफी मिलेगा आपको, स्पेशली E311 अराउंड अल नहदा एंड अल कसेज एंड इनसाइड दुबई. यू कैन कीप एन आई ऑन अल कील रोड अराउंड अल बर्शा साउथ, वाइल शेख जायद रोड थ्रू डाउनटाउन DIFC एंड बिजनेस बे कंपैरेटिवली लाइट ट्रैफिक है. लेकिन ऑफकोर्स यार 4:30 के बाद आपको काफी ट्रैफिक मिलेगा, पीक इवनिंग ट्रैवल टाइम लगेगा. सो टेक योर सेल्फ एक्स्ट्रा टाइम एंड अगर कहीं और फंसे हो डू लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर.
3: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 mein hu Avni aapke saath, and this song of the hour was brought to you by insurancemarket.ae with 30,000 Google reviews and a 4.8 star rating. Built in UAE, trusted across UAE. Every review is a story of trust. Every policy is the promise kept. insurancemarket.ae. And filhal ho raha hai mere jaane ka time, par aapko pata hai na, main hamesha rehti Instagram pe online. All you gotta do is give us a follow on 106.2 Big FM ka page. It's our Insta handle. Jaoge ab चेक कर ही रहे हो तो मेरी और मानसी की ना एक रील डली हुई है. इट्स अ गेम रील, एंड लेट मी नो यार कि कौन जीता कौन है भाई इस गेम में. Well, वो तो फुल ऑन है. यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज अवनी यार AVNIYAAR. बाकी मिलते हैं कल 1 to 5 ओनली ऑन द बिग मिक्स. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद Avni, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:08। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: I'm sure you're thrilled, you're excited. It's a brand new month already, the 9th month of the year. अब बस तैयारी कर लो, कुछ महीनों बाद हमने फिर से वही डायलॉग मारना है. ये साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला. फिलहाल while you are heading home, every single evening जब आप घर जाते हैं, हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं, गाने गाते हैं with the karaoke.
1: Karaoke.
2: देखो दो ऐसी चीजें हैं दैट अस देसीज लव, एक अच्छा खाना एंड एक गाना गाना. अब कैसा भी आप गाओ, गाने का शौक है देन दिस इज इट. आज का ये जो गाना है 90s का बहुत पॉपुलर गाना है, बट इट्स अ बिट ट्रिकी. लेट मी सी कितनों को ये गाना याद है. मूवी का नाम विजय पथ था.

थोड़ा सा टफ है, जिन्होंने 90s में कैसेट रिकॉर्ड कराई थी, कैसेट बैक टू बैक सुनते थे, उन्हें शायद याद आ रहा होगा ये गाना है कौन सा। एंड अगर 90s में प्यार इश्क मोहब्बत वाला सीन था आपका भी, तो 100% ये गाना आपको याद होगा, याद आ गया है। एंड आप गाना गाने का शौक रखते हैं, इफ यू आर अ प्रोफेशनल बाथरूम सिंगर देन डू गेट इन टच विद मी, either give me a call 800-1062 pay, you can also send me a WhatsApp, I'll call you back 054-309-1062 par. We are karaoke king right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, ye hai Big Thrill, main hu Mansi. And of course, every single evening, 5 se 6, hum karte hain gaadi mein concert with the karaoke. Joining us is Wajahat. Good evening.
2: Very good evening to you, Mansi.
1: How are you, Wajahat?
2: I'm fine, doing great. How about you?
1: Good, lagta hai aapki salary aa gayi hai. You sound very, very happy.
2: I'm just going to, you know, park the car because, you know, it is very difficult for me to, you know, singing. So I just
1: stopped the park. Isse kehte hai shiddat. किसी लड़के ने आज तक गाड़ी पार्क करके मुझसे बात नहीं करी है, ये गाना गाने को तैयार है. मजा आ गया यार वजाहत, मतलब आप गाने का शौक रखते हैं.
2: Of course, definitely, गाना तो रग-रग में है हमारी.
1: तो मतलब एवरी पार्टी यू गो टू पीपल आर लाइक वजाहत प्लीज एक गाना सुना दो.
2: एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर दैट पार्टी टू बी परफॉर्म बट जस्ट फॉर फन ओनली बिकॉज दिस इज माई यू नो एम्बिशन टू परफॉर्म एनीवेयर विदाउट एनी कॉस्ट.
1: ओह, फ्री में आप कॉन्सर्ट करने के लिए तैयार हो. चलो आपको ऑडिशन यहाँ पे करते हैं. इफ यू लुकिंग फॉर अ सिंगर, वी गेट टू सी इफ ही इज गोइंग टू मेक द पार्टी बेटर या फिर लोग जो है अगली बार से आपकी पार्टी में नहीं आएंगे वो अभी पता चल जाएगा. तो फिलहाल वजाहत की आवाज में सुनते हैं.
0: कारियोकी.

0: से मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वो ही बात हो गई। ला ला ला ला ला
1: लजाद, आई एम टेलिंग यू, फ्री में मत गाना, बहुत अच्छा गाते हो यार। वेरी नाइस, वेरी नाइस,
2: थैंक यू सो मच।
1: कंप्लीटली ट्रैक पर, मतलब सारे सुर जहां लगने थे वहीं लगे और दिल को लगे, कानों में चुभे नहीं। आपको करना चाहिए, यू शुड रियली प्रैक्टिस।
2: डेफिनेटली, बिकॉज मेरा चैनल है एक्चुअली यूट्यूब पे, और मैं ज्यादातर इंडियन गानों को ही प्रेफर करता हूँ स्पेशली, और टिकटॉक पे भी हूँ लेकिन थोड़ा कम, मतलब ज्यादा
1: नहीं। नहीं सर, टिकटॉक पे क्या है आपका हैंडल?
2: टिकटॉक से मेरा वजाहत के नाम से ही है।
1: मैं आपको अभी फॉलो करती हूँ, आप गाने गाओ, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो एंड यू डिजर्व टू बी पेड फॉर योर सिंगिंग, सो डोंट डू इट। क्योंकि लोग कहते हैं ना, फ्री की चीजों की लोगों की कदर नहीं होती है, तो आप चार्ज करो और 100% बिल्ड योर कम्युनिटी। You're fantastic at it.
2: Thank you, Masi. Thank you so much for picking my call, and all the best of that my newcomers who are coming for this field actually.
1: Very, very nice. देखो, ये एक budding singer हमें आज मिले कारियोकी में, यही हम करते हैं, घर जाते जाते माहौल बनाते हैं। आज माहौल बनाया वजाहत ने, थैंक यू सो मच वजाहत।
2: My pleasure always.
1: Bye. अगर आप भी गाना गाते हैं, गाना गाने का शौक रखते हैं, आए या ना आए, if you love this song, give me a call, 800-1062 पर।
3: Karaoke. Beat 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: high-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
2: The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
2: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
4: हाँ जी, वेरी वेरी स्लो मूविंग ट्रैफिक एट द मोमेंट. इफ आप जा रहे हैं फ्रॉम डिस्कवरी टू फरजान, इट इज अराउंड 30 टू 35 मिनट डिले. ट्रैफिक ट्रेलिंग वेरी वेरी स्लो. इफ यू टेकिंग हेस स्ट्रीट, जेवीसी, जेवीडी, प्रोडक्शन सिटी तक बहुत ही पैची ट्रैफिक है. मरीना से जेएलटी अगेन 15 टू 18 मिनट डिले. हैवी ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद, फिलहाल एक घंटा 4 मिनट का डिले है. शेख जायद पर 48 मिनट डिले. इट इज पैक्ड, स्टैंड स्टिल डेरा से. इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अबू हिल, फर्दर टुवर्ड्स ग्रेर, एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट, let me know. 800-1062 par.
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
5: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
6: नहीं, ये तो मुफ्त है.
5: गुड, चलो फोन लगाओ.
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, यह है बिग थ्रिल, मैं हूं मानसी। यहां पे महफिल जमी है कारियोकी की। यस, इफ यू लव सिंगिंग, गाना आए आना आए कॉन्सर्ट आपका, ऑडियंस मेरी, बटन मेरे हाथ में है, सो डोंट वरी। एंड अगर आप गाने का शौक रखते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गिव मी अ कॉल, अर्जुन की तरह। हाय अर्जुन।
2: हाय मानसी,
1: हाउ आर यू, कैसा रहा आपका ट्यूसडे?
2: या इट वाज लिटिल बिजी इन द ऑफिस, बट स्टिल इट्स फाइन, थैंक यू।
1: क्या करते हैं आप?
2: आई वर्क इन You know, construction company.
1: Very nice. तो ये construction करते करते आप गाने गाते हैं साइड में?
2: Yeah, that's you know, some passion was there. Anyway, just trying something.
1: Trying something मतलब ये पहली बार? Are you trying to sing or you sing often? Because sir, मेरी रोजी रोटी है।
2: कभी कभी गाना भी गा लेता हूँ।
1: अच्छा, तो ये जो गाना है राह में, उनसे मुलाकात हो गई, सबसे पहले किसके लिए गाया था आपने?
2: सबसे पहले किसी के लिए गाया तो नहीं था, मगर मैंने सुना है बहुत बार।
1: किसी का तो सोच के सुनते हैं ना हम गाने। आप किसे सोच के सुनते थे?
2: ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये जो गाना है ये मेरे बेस्ट गानों में से एक है।
1: मतलब मैंने कोई पुराना जख्म जो है वो छेड़ दिया। चलिए अब अर्जुन की आवाज में सुनते हैं।
0: Karaoke.

0: आज तो सारे कुमार सानू यहीं पे आ चुके हैं
1: पढ़ा। मुलाकात हो गई जिसे डरते थे, बड़ी बात हो गई।
0: ओए होए होए होए, कमाल गाया है अर्जुन, कमाल गाया है। बट आपने स्टिल मुझे बताया नहीं कि पहली बार किसकी याद में किसके लिए आपने ये गाना गाया था। कॉलेज में सुना था, स्कूल में सुना था?
1: स्कूल में था। नाउ आई एम 39, सो आई थिंक व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन स्कूल दिस सॉन्ग वाज रिलीज्ड।
0: सो वाज इट अ कोएड स्कूल और अ बॉयज ओनली स्कूल?
1: It was a mixed school.
0: हाँ, फिर तो 100% किसी के लिए सुना होगा, किसी के ख्यालों में सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। But you sang really well and I hope you had fun.
1: Yeah, definitely. Thank you very much and you are doing a very great job and this is a very nice program.
0: Thank you so much, sir. Thank you so much. इसी बहाने ना मैं अपने दिल के अरमान पूरे करती हूँ। किसी लड़के ने आज तक गाया नहीं, आप लोग गा लेते हो, मैं सोचती हूँ मेरे लिए है, तो मैं भी खुश, आप भी खुश। Have a great evening. Thank you so much.
1: Thank you,
0: bye-bye. Bye. Big.

0: 101.2. The Beat of Bollywood.
1: Digestion Cool Tips with Dabur Pudin Hara.
2: AC से रूम कूल होता है, डाबर पुदीन हरा से टमी फील्स कूल। वन टाइनी पर्ल विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स हेल्प सूथ इनडाइजेशन डिस्कम्फर्ट नेचुरली।
1: डाबर पुदीन हरा, स्टे इनडाइजेशन फ्री द नेचुरल वे। अवेलेबल ऑन नून मिनट्स। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन।
0: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big 106.2. That's my song.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, yeah, Big Thrill, मैं हूँ मानसी. Also, this hour of the show, we play this fun game, it's called the 5-second rule. आपको मिलते हैं 5 second, मैं आपको देती हूँ कुछ categories. पता है मुझे यार, sounds very very easy, but इतना easy है नहीं. जितने भी लोगों ने खेला है, उन्होंने admit करा है that it sounds easy, but when you playing the game, it's not very easy. So if you think you can crack it, आप 5 second में फटाफट जवाब दे सकते हैं. 800-1062 मेरा number है, give me a call. Today also happens to be National Forgiveness Day. तो पोल होने वाला है ऑन इंस्टाग्राम. आर यू समवन जो आसानी से किसी की भी गलती माफ कर देता है, या फिर आप मेरी तरह हैं? ना ही मैं गलतियां भूलती हूँ और ना ही मैं माफ करती हूँ. लेट मी नो, गो एंड चेक आउट द पोल. इट्स अप ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज 106.2 बिग एफएम.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. Thursday ki shaam hai. We're playing the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I give you a few categories. Aapne teen cheeze batani hoti hai within 5 seconds. Right now on the phone lines, Neetu, hi. Arey, inko dusra phone aa gaya.
3: Acha.
2: Ye kaun phone kar raha hai dusri line pe? Utha lo. Kaun hai?
3: No, actually my office phone ringing.
2: Koi to hai special.
3: नहीं कोई नहीं
2: है नीतू इतनी हंसी ऑफिस के फोन पे तो नहीं आती है
3: मुझे आप मेरी टांग खींच रहे हो ना मुझे बहुत हंसी आ रही है
2: मुझे ऐसा लग नहीं रहा है मुझे लग रहा है किसी स्पेशल का फोन है उठा लो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है
3: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं
2: अच्छा ठीक है नहीं तो करते क्या हो ये जो ऑफिस से इतने शाम को फोन आ रहे हैं
3: मैं अकाउंटेंट हूँ
2: बेचारे अकाउंटेंट को सारा दिन फोन आते हैं ऑलराइट नीतू प्ले द 5 सेकंड रूल इट्स अ फन गेम यू गेट 5 सेकंड्स आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज तीन चीजें बतानी है आपने विद इन 5 सेकंड्स आर यू रेडी
3: यस
2: ऑलराइट
1: 5 सेकंड रूल
4: ओह या
2: तीन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के नाम
3: पालक
2: अच्छा
3: मेथी
2: हाँ,
3: और ग्रीन पीस
2: ऑलमोस्ट देयर क्विकली टेल मी तीन चीजें जो आपको सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन पे मिलेंगी रेलवे स्टेशन पे
3: पानी समोसा
2: रेलवे
3: स्टेशन पे मिलेंगी
2: रेलवे स्टेशन पे पानी और समोसा मिलता है
3: चाय भी मिलता है
2: सलमान खान की मूवीज
3: प्रेम रतन धन पायो
2: और
3: वांटेड
2: वेरी नाइस तीन गाने जिसमें दिल आता है
3: दिल दे दिया है
2: हाँ
3: दिल ना दिया
2: अच्छा टाइम भी खत्म हो गया थ्री वर्ड्स जो क्रिकेट में यूज होते हैं
3: क्रिकेट
2: हाँ क्रिकेट
3: यूज होते हैं बॉल बैट
2: पांच सेकंड खत्म होने के बाद तो ये शुरू ही है बॉल बैट वर्ड नहीं होते जैसे हाउस दैट LBW हिट विकेट क्रिकेट का शौक नहीं है आपको
3: आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट क्रिकेट
2: नेम थ्री क्रिकेटर्स फॉर मी दैट यू फाइंड गुड लुकिंग
3: विराट कोहली
2: बताइए
3: धोनी
2: और
3: एंड
2: टाइम खत्म हो गया कह रही है कि मुझे क्रिकेट नहीं अच्छा लगता है फटाफट विराट कोहली तो ऐसे आया है मतलब आधे सेकंड में है आपकी जिंदगी में कोई विराट कोहली जैसा ग्रीन फ्लैग नहीं हैंडसम तो सबको ही लगता है नहीं है
3: अनफॉर्चुनेटली नहीं है
2: आई हाय तो आप ऐसा बंदा ढूंढ रहे हो विराट कोहली जैसा
3: हाँ।
2: सभी ढूंढ रहे हैं क्या कर रहे हो ढूंढने के लिए
3: आप ढूंढ के दोगे
2: मेरे खुद के पास नहीं है मैं सबसे पहले अपने लिए रखूंगी मैं तो बांध के अपने पास रखूंगी कि भाई कहीं मत जाना बहुत टाइम बाद मिला है बट अच्छा
3: ठीक है उसका भाई मुझे दे देना
2: ये देखो गांव बसा है नहीं लुटेरे पहले आ गए
1: 5 सेकंड रूल
2: तो कहाँ ढूंढ रही हो कहाँ मम्मा पापा ढूंढ रहे हैं और यू आर पार्ट ऑफ सम डेटिंग ऐप
3: मम्मा पापा तो बोलते हैं कि तुम खुद ढूंढो
2: तो नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना खुद तभी तो आपके पास आया मम्मी पापा तो ये कहाँ ढूंढ रही है नीति लड़का
3: मेरे को दुबई में ही चाहिए कोई
2: नहीं नहीं दुबई में तो कहाँ ढूंढती है मॉल ऑफ द एमिरेट्स में डेरा में कहाँ ढूंढ रही है
3: नहीं यार इसे टाइम नहीं मिलता है कि वहाँ जाके
2: ऑफिस में नहीं है कोई क्यूट सा
3: सोचती हूँ कभी कोई नहीं वो नहीं हम लोग जैसे मूवीज में होता है ना कभी कोई ऐसी टकरा जाए
2: नहीं बेटा यहाँ नहीं ऐसा हो पाएगा ऐसा कुछ टकराने वाला सीन इतनी गर्मी है लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं ऑफिस में नहीं है क्या कोई क्यूट वाला
3: सही है नहीं यार ऑफिस में सारे मुझसे बड़े बड़े हैं
2: इसने कुछ और बोलना था बट फिर बोला सारे मुझसे बड़े बड़े हैं आई होप जल्दी आपको लड़का मिले गेम आपने ठीक ठाक खेला नीतू जी हैव अ ग्रेट इवनिंग इट वाज लवली टॉकिंग टू यू
3: ओके थैंक यू
2: अच्छा यहाँ पे so अगर कोई सिंगल लड़का सुन रहा है तो मैं और नीतू दोनों हैं तो अब आप देख लेना चलो बाय
3: बाय
2: यही है 5 सेकंड रूल अगर आपने खेलना है की रूल है मुझे कॉल करना 801-062 पर मैं हूं मानसी दिस इज द बिग थ्रिल

0: 105.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
3: InsurersMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsurersMarket.ae.
4: This summer, there's big cash wins with Big Ticket.
5: A guaranteed 15 million dirham grand prize away.
4: Plus, with Big Spin, the chance to win up to 1 million dirhams.
5: And 5 consolation prizes of 100,000 dirham each.
4: Don't forget the 4 weekly cash prizes of 25,000 dirhams.
5: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNC's apply.
0: Missed your morning buzz?
7: उठा ले रे देवा।
0: Yes, सुनो।
8: आज के हमारे contestant I've got Amit Mathrani with me on the phone line. Good morning, Amit. How are you doing?
9: Good morning, I'm fine. How are you?
8: Oh, काम पे पहुंच गए।
9: थोड़ा।
8: खुसपुस करके बात करनी पड़ेगी। How many times have you been to Germany to visit your daughter?
9: Just basically twice.
8: Twice? Not bad. अच्छा, just like great है भाई। चलो सही है। So should I start your time? Are you ready? Your time starts now. Your options are currywurst, poutine. And hot dog.
9: The first one.
8: You're saying the first one. Are you sure?
9: First one.
8: Have you had it?
9: Hot dog to nahi. Believe me, I'm a vegetarian guy.
8: Yeah, the first one. So congratulations, your name goes into the draw.
9: Thank you so much.
8: And बस कुछ दिन और आपको अपने fingers crossed रखने हैं. Ask your daughter to also keep her fingers crossed in Berlin. That अगर आपका नाम draw में से निकल गया, you'll be heading out to Berlin with Team Big. How does it feel right now? Describe your feelings.
9: It really feels nice. Thank you so much for giving me the opportunity.
8: Yeah.
9: And after a long time, I'm basically participating in such kind of competition.
8: So are you going to tell your daughter or is it going to be a surprise or what?
9: No, basically she's right now over here. Break pe aayi hai, but I won't tell her anything.
8: चलो बढ़िया, जब नंबर लग जाए तभी बताना। एक्चुअली जस्ट सरप्राइज है, ओके? जस्ट धमक जाना वहां पे।
9: नहीं, क्यों करना वहां पे सरप्राइज है।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलराज, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
12: स्टिल 37, लो जाएगा अराउंड 33, वेरी वेरी ह्यूमिड। अगर मेरी तरह चश्मे पहनते हो तो हमें असली ह्यूमिडिटी फील होती है द मोमेंट वी स्टेप आउट, एवरीथिंग इज धुंधला। 72% पे है ह्यूमिडिटी फिलहाल।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: I am going global. In fact, I've gone global. मुझे international call आया भाई. बॉम्बे से call आया है. ओए होए होए. Good evening, PK. How are you?
2: Absolutely fine. What about you?
1: Good, good, good. आप तो बॉम्बे की बारिश से मानसून enjoy कर रहे हैं.
2: Correct, correct, correct. This Ganpati Bappa is also coming to very soon.
1: I know, right? I've never been to Mumbai during Ganpati, but I've heard it is fantastic. Lal Bagh Chauraha?
2: Yes, everywhere. I mean, everywhere you're able to hear this Dol Tasha and all. The vibes are going on. The decoration things are going on.
1: देखो वाइब तो यहाँ भी हम सही सेट करेंगे फॉर गणपति. सो यहाँ भी माहौल पूरा मुंबई जैसा ही क्रिएट किया जाता है, दुबई में भी. बट फिलहाल मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. आज है नेशनल फॉरगिवनेस डे, तो क्या आप इजीली लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, माफ कर देते हैं?
2: डेफिनेटली यस. और आज मैंने ऐसा कुछ किया भी है.
1: किसे माफ किया आज आपने?
2: ड्राइव करते करते लोग ऐसे वैसे बीच में आ जाते हैं तो हो जाती है बातें.
1: ओह,
2: एक दूसरे को सॉरी.
1: वेरी नाइस. और इंडिया में ये करना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया में तो गाड़ी से नीचे उतर के बॉम्बे का नहीं पता है. मैं तो दिल्ली और नॉर्थ साइड की बातें जानती हूँ. तू जानता नहीं है कि मेरे फादर साहब कौन है, बस वहीं से शुरू हो जाते हैं सब. तो इंडिया में ये करना इज अ वेरी बिग थिंग. मतलब आप इजिली फॉरगिव कर देते हो. फिलहाल मुंबई से आए हैं तो सीधा खेलेंगे 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम सर. यू गेट 5 सेकंड. आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज. 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
2: मेरी डॉटर एक गेम खेलना चाहती है, दैट्स द रीजन आई कॉल्ड.
1: अरे वेरी नाइस, व्हाट्स हर नेम?
2: यशवी कटर है, शी विल बी राइट नाउ ऑन द नेक्स्ट टू दिस.
1: ओके, हाय यशवी, हाउ आर यू? पापा ने बहुत छोटे बच्चे को ये गेम दे दिया है, बट चलो खेलते हैं.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह यस
1: यशवी, कैन यू नेम 3 फ्रूट्स फॉर मी?
4: एप्पल, बनाना,
1: मैंगो. ये देखो बच्चे बड़ों से अच्छा खेल रहे हैं. 3 सेकंड में इसने जवाब दे दिया. वेरी नाइस यशवी. क्विकली नेम 3 शाहरुख खान की मूवीज इफ यू वॉच बॉलीवुड. ये टफ हो गया शायद बच्चे.
4: हाँ,
1: अरे अरे अरे, बाजीगर. वेरी नाइस. अच्छा, 3 स्टेट्स, इंडिया के 3 स्टेट्स.
4: ओडिशा, महाराष्ट्र, केरला.
1: ये बच्ची बहुत होशियार है सर, आपकी बहुत होशियार है. 3 थिंग्स दैट यू कैन एड इन योर चाय. ये देखो ऐसे खेलते हैं 5 सेकंड रूल. अच्छा, 3 ऐसी चीजें जो आप चाहते हो कि पापा आपको आज खरीद के दें. 3 थिंग्स यू वांट पापा टू गिफ्ट यू.
4: कुछ भी बोल दिया.
1: कुछ भी बोल दिया. क्या चाहिए पापा से? अभी तो मौका है यशवी, मांग लो.
4: कुछ नहीं चाहिए अभी तो.
1: ये देखो सर, ये कहाँ क्या खा के आए हैं ये बच्चे, मतलब इतने संस्कारी, इतने संस्कारी. कुछ नहीं चाहिए. Well played, Yashvi. Well played. This is how you play the game. मतलब 3-3 सेकंड में बच्चे ने जवाब दिया है, तो बड़ो ट्राई करो. फिलहाल थैंक यू सो मच, एंड जब भी मुंबई आना हुआ आई विल डेफिनेटली मीट यू गाइज. हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू सो मच, बाय, ड्राइव सेफ. ये 5 सेकंड रूल. देखो मुंबई से कॉल आया था, यहाँ तो टोल फ्री नंबर है 800-1062.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is The Big Thrill. And of course, the biggest news is it's time for you to check in. We are taking you to Germany in about 15 minutes. I'll run the randomizer. Could be you if you have registered. नहीं किया है तो फटाफट करना चाहिए बिकॉज आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस दिस अ ट्रिप टू जर्मनी वो भी ऑल एक्सपेंसेस पेड सो इफ यू हैव नॉट चेक्ड इन डू इट राइट अवे एक व्हाट्सएप करना है बिग चेक इन अपना पूरा नाम राइट नाउ 04309 1062

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 7:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: यू नो, जब हम छोटे थे ऐसे गाने टीवी पे आते थे तो मम्मी चैनल चेंज कर देती थी या फिर हमें डांटने लगती थी, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं होती थी, टीवी पे आता था यार।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: फिलहाल बचपन से याद आया, इट्स बैक टू स्कूल टाइम। किड्स आर आई एम श्योर एक्साइटेड टू गो बैक टू स्कूल। कल से स्कूल शुरू हो चुके हैं। स्कूल रन्स, पिकअप्स, ड्रॉप ऑफ्स, एंड इफ यू लुकिंग फॉर दैट परफेक्ट कार रेंटल, देन लुक नो फर्दर देन selfdrive.ae। यू कैन गेट स्कूल रेडी विद देम। यू कैन रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 1099 dirhams a month, exactly 1099 dirhams a month. Flat rate hai for the entire year, zero penalty on early returns. So do get in touch with them for more details. selfdrive.ae it is.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: going to. The beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. Hello. सुन रहे हो ना?
3: Hey.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, this is The Big Thrill and sometimes I save the best for the last. I'm going to take you to 2006. आज ही के दिन 2006 में पहले सोचो आप क्या कर रहे थे. मुझे तो honestly याद नहीं क्योंकि मैं काफी छोटी थी, but I remember watching this movie in the theaters because it was a tradition in my house. I think मैं इतनी फिल्मी इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने हमें हर मूवी दिखाई है. मेरी फर्स्ट मूवी इन द थिएटर वॉज मोहरा. आई वॉज जस्ट बॉर्न एंड आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट थिंग दैट आई एवर सेड वॉज टू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त. आई एम नॉट इवन किडिंग. वेन एवर यू गेट अ चांस टू मीट माई मॉम शील एक्चुअली टेस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. बट 2006 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड संजय दत्त की आइकॉनिक मूवीज में से एक है. मैं आपको एक हिंट दूंगी एंड यूल अंडरस्टैंड द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. गैंगस्टर इन लव विद अ रेडियो जॉकी एंड गुड मॉर्निंग मुंबई. अगर याद आ गया है द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धपकेंगे ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo, khush hua.
3: Quickly name three things jinka naam shuru hota hai with the letter Z.
4: Zip, xylophone.
3: Xylophone.
4: Zebra.
3: हो गया टाइम खत्म मिस चांदनी टाइम इज ओवर तीन वैरायटी ऑफ मैंगोज
4: चौसा
3: हाँ
4: क्या चौसा अनवरटोल एंड सिंदरी
3: व्हाट इज अनवरटोल
4: इट्स अ टाइप ऑफ मैंगो इन पाकिस्तान
3: रियली अच्छा आई डिडंट नो दैट चलो गुड इन्फॉर्मेशन फॉर मी क्विकली तीन शाहरुख खान की फिल्मों के नाम
4: मैं हूं ना कुछ कुछ होता है खुशी कभी गम
3: वेरी नाइस शाहरुख खान फैन मिस चांदनी तीन ऐसे झूठ जो आप अपने बॉस को बोलते हो
4: कि आज गाड़ी का टायर फट गया कि मैं उठी नहीं और रोड पे एक्सीडेंट था
3: हाँ इनमें से मानते कौन से
4: सारे मान जाते हैं बहुत ही अच्छे
3: सिंगल है क्या वो भी
4: तकरीबन
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Chill. Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही, यही 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: कैच द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे फ्रॉम 3 to 6 PM विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.